0: Cubán Petolera.
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।